नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा तसी तरना सुर स्थित पद तेज इंद्र सुन राज भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारि सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण गित वेद यो पुराण गित सिमृत समूहन के होय होय बितय है। मोहन दीमदार किते अश्विनी कुमार किते अंशावतार किते काल बस भय है। फिर पिकम्बर किते गने न परत ये भूमि ही तय के फिर भूमि ही मिलाए है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई गोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तूप जी कपट भेष पोषती अनेक दानी वावत है। शीश को कहा भयो मल जो पिकाढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस टांग अथ तीस को कहा भयो मल जो पिकाढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुग जो पेडार रहे उर्दमुख मान ते न मुंड ने होरायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को शेष पट कत जाके कान में खजूरा दस मूंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरैया फल फूल को बचैया सदा बन को ब्रह्मैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शेष वृक्ष न सो माटी को बचैया बोल पूछ लीज जो कसौ कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचो करत मोर दादर कर।

ਪਾਹਨ ਅਨੇਕ ਜੁਗ ਏਕ ਠੌਰ ਬਾਸ ਕਰੇ ਕਾਗ ਔਰ ਚੀਲ ਦੇਸ ਦੇਸ ਵਿਚਰਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਹੀਨ ਮਹਾਦਾਨ ਮੈਨ ਹੂਜਲੀਨ ਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨ ਦਿਨ ਕੈਸ ਕੈ ਤਰਤ ਹੈ जैसे एक स्वांगी गहू जो किया बरागी बन कब हूँ संन्यास फेस बन के दिखावई गहू पान हारी कहू बैठ लाए तारी कहू लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहू ब्रह्मचारी कहू हाथ पर लगावे बारी कहू दंडधारी हो के लोकन प्रमावई कामना दीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकारे पर सीत काल कुंचर

ताप के सहित जो पाइये अताप नाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो पायत अजाप देव बूदना सदेव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी ढोल बो करत है। आग में जरत गत राण की बरत कर।

करीम सोए रास करहीम ओए दूसरो न भेद कोए बोल ब्रह्म मान बो एक ही किसे सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज हुई मान सब एक भय अनेक ब्रह्मा है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश।

जैसे एक आग ते कनु बगोट आग उठे न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होय ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज केते अच वच हो सब बच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच बच को करेंगे भज केतक व्रत अच हो।

न जाते न बाते न सत्र न वित्र सभूते भविखे भवाने यचित्रे नारायण न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग भेकं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भैरवृथादं अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेयंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न

परम प्रज्ञा कहूँ सर्व भूपं कहूँ नेह ग्रहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जश गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तापसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दान भी हो कहूँ जश विद्या धरे मान भी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप नासान तुट तेज अनुकुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम ताम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप कै अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कत्थत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत धाम परखा संत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावत न पार कई ऊर्ध पाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेब कई अग्न होत्र कई पौनहार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र बच नई तदप देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धरम कई देश देश भाखार अटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपायत न पार कई तीरथ तीरथ भर मत सो भरम कई यज्ञ होत्र कई देव गरम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदपता सपायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ कर्त जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप देव कहूँ वर्गदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जबत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप दास पायत न अंत कई गर्त कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत

जय जम पह जो कण जो जो अंग भय कम पह मेर पयाल भूंग तब तापस सर्व जलेर थलंग धन उचर देन्द्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप वेद भयंगन खंड अभूत छेद छ्यंगन काल पाल दयाल सुवंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड मंड प्रचंड नरंग जे रच्यंग देव देव परंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रच्यंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न वेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जे रच्यंग छत्री छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैग न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रच्यो तत चार करी नवखंड सच्यो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बत आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु बिंद नगिंद नकंग श्रेय जज गंधर्व पंडिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नर पाल त्रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद्भुजंग किए देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंपय किन्नर जच्छ जुवंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच्छ भुजंग दिए गज वाजर थादक पांत गणंग भव भूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल।

न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है।

न सीत है न सोच है न ग्राम है न गाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ।

न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्पति विषय किए, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए। सदैव सर्वलोक के

सर्वटार विखे रम्य उजय चक्र चिहन न चित्र आद देव उदार मूर्ता गात नाथ अनंत आद अंत न जानी अभिघात देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन केस नंदन पाव ही न हसेब जाछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उड़गा पार नेद नेद पुगा रहे शिव सक्रो मुखचार सर्व सबद बतार के दर्जा पही जह जाप आद देव अगाद तेजा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहे ओ बिराज दिराज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़न अभिल भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल

चक्र चिन्ह न वर्ण जा को जात पात न भेद रूप रेख न रंग जा को राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व खायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी याद देव पाल दीन बंध प्रवीण श्री

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख परमाथ दुष्ट हर्ता शिष्ट कर्ता जगत मय जयगात भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाथ श्रीपत परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जे तकीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्न।

सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शासन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका जले दले मैं जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेवना पावे शिव रुद्र ओ मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गायत के सब कुंचकृत बे मुख चार आद अंत न मध जा को भूत भव भवान सत दुआपर तृतीया कल युग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर

कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन गुरु की रागी कवन कहो तत् मोह तवन दोहरा। कवन दृष्ट को पुष्ट है।

दुर्जंदल दंडन असुर व्यंडन दुष्ट निकंदन आदि वृते चरासुर मारण पत दोदारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीमघा सुर मर्दन रमक परदन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन महक मथे।

चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी तमंकन दुजा परंकन फणी फुंकारण जोध जिते सरदार विपर कण दुष्ट प्रकर कण पुष्ट प्रहर कण दुष्ट मथे जय जय हो सी महासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अथे दामनी प्रहासन सुचम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ कते रक्तासुर आचंजोध ब्रह्माचंद्र हृदय नराचंदर अमृते श्रोणंत अचिंती नर विवंती जोग

कारण बाघ बकारण सस प्रहारण साधमते सहते सन्नाश प्रवाहन भूल निवाहन तेज तुलं जय जय हो सी मैकासुर मर्दन भूमा काज पताल जलं चाचर चमकारण चिच्छोरहारण धूम दुंगारण द्रप मते दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होशी मैकासुर मर्दन परम विनाशन धरम तुझे घुंगुरु कमंकण शस्त्र जमंकण फणियर फुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय होशी मैकासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन भृत मथे कावरू कुमारे अधम दारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसूहण सुर नर मोहन सिंगारोहण वितल तले जय जय हो शेष बठोर निवासन बाये बताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण दुंद तवे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होशी सहस्र प्रकरण आद अनिल अगाध भे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा

सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दोख हरे। जय जय हो सी मंगा सुर मर्दन विश्व विदुन संसिष्ट करे। दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान भी प्रकार खंड सर वर वर खंड दुष्ट

गंजन गुमाने अतुल रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो से मैं खासुर मर्दन साध प्रत छन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गईली जोत जतीली तुंद मते अष्टाय।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल बदे सरदार विपर खंड दुर्जन धर खंड तुल्लम खंड धरम तुझे धूमराज विदुम संसुण।

कई उच नीच क्यों नो बनाओ सब वार पार जय को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाय मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सेवंत कई पलट सूरत सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग सोग तेरह द्रूप अनभय खाल अच्छे स्वरूप करुणा निदान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता।

जे सत्र मित्र दुवे एक सार अच्छा स्वरूप चल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जे सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जे चक्र चैन नहीं रंग रूप जे खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहा सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग नूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंश तेज अन भिज दाग जल धल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निज दिन उज

दीनन की प्रतपाल कर नित संत उपार गनी मन गारे पच बसो नग नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार है। पोखत है जल में थल में।

अखंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम के प्रीत संभार पार न पाय सके पद्मापद भेद कते वेदोचारे रोज ही राज विलोकत राज करो गुरुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव कपे अंग न भेव रख्यो भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों किंस

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह बोधन देह विरक्त केह छय है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पद मापत ले।

है तो सौ सौ पेट ही गे बट बीच बचावे। जाच भुजंग सुदानव देव बेवत में सब ही कर द्यावे। वो माकाद पताल सात जाच भुजंग सब है सिरन्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाओं को ने तही ने तह वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुर आनंद से रुम नारिग से सब हु मिल गायो। वेद कते वन वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो ते को मन में जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्वाण सब बजहारे। वेद न पाए सकियो न भेद को खेद तहै अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद न तकाद बेकद वैग जप्यो तिन्हि कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरयो कर भेद संबोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया वसान के दिवैया है कटैया जम्ब जाल है जुद के जितैया विरुद्ध के।

पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय दयावे गोर कर दिजी गुण गावे तेरे नाम है जोगि जोग साधे पौन साधना किते गबांदे अरब के अरब अराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पछम के पछमी पहचाने निज काम है मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है रूह के रोयले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मचीन के शेष न्यावे ते बते थे आए दोख दे के दलत है जिन्हें तो हृदय तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है देव देव दान को सुरेश दान वान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधु दीन कहियत है पाइये न पार देज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथ की पुकार पल पाछे पहुँचत दाहे चिट की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुखचार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे बार ताहि ते अपार निराधार लहियत है पूरा न अवतार निराधार है न पार वार पाइये न पार पे अपार के बखानिये अद्वैपनासी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के रसी है अनासी के मानिए जंत्र हूँ न जाल जाकी बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा के सोचा के अन मानिए तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए तेज हूँ बता रहे के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है कामना की खान है के साधना के सान है।

राजन के राजा महा साज होंगे साजा महा जोग होंगे जोग है दरैया द्रव मचाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरावत छाछ कैसे छतरा नेर छपा कार कैसे छप काल इंद्र के गोल के हंस निश सिंहारू मही रसी हो सेना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सी शशि सुरंगाबाद के सूज रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत ते हरि रही मालती सी फूल के फटक सी के लाल कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी शशि सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलबाने रहस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन से चंपावती चंद्रमा से चंद्र गिर चांदनी से चंदागढ़ जोन जो हियत है गंगा सम गंगधार बकान से बिलंदवाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके तुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है बकरी गंधारी गोर ककरी गद जचारी बौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दया ता बिनाथ

0: दोहरा। अब अजीत सिंह की कथा सुन श्रोता सावधान।
1: सात संगा जी दास ने कल भी बेनती की सी, ए ओ पालक अजीत सिंह जिन्हू माता जी ने माता सुंदरी जी ने पालना किया, एदा नामकरण जदों कीता गया उन्होंने अजीत सिंह रखिया, लेकिन यह अजीत सिंह जड़ा इनू इतिहास दे विच पालक अजीत सिंह, पालक का मतलब गोद लिया होया, पालिया पोसिया, एक ता जाया हुंदा है जो माँ बाप ने उन्हां दे संजोग दे करके जिहड़े जाए जांदे हन वह बिंदी पुत्र बोलते हैं। कई बच्चों नूं पाल पोस के आपां वड्डा करदे आं उहनूं पालक बोलते। यह जो पालक अजीत सिंह ओहदी कथा आप जी सरवण करो।
0: पालक माता सुंदरी पा बालक ते जवान।
1: माता सुंदरी जी ने इन्हें पाल पोस के वड्डा करना कीता है, बचपन तो बच्चे तो यह जवान हो गया।
0: जाओ पई वस्त्र विभूकन सुंदर।
1: माता जी एदे नाल बड़ा प्यार करते हैं, बहुत लाड लटाउंदे, तरह तरह के वस्त्र गहने आदक इनू बना बना के देंदे।
0: चपल तुरंगम मूल महान।
1: उस माने दे वधिया चपल तुरंगम जेड़े हन, चंगे ताजो तरीन घोड़े जड़े हन ओ लिया करके दिंदे।
0: माता दुलारत विविध प्रकार।
1: माता सुंदरी जी तरह तरह दे नाल एनु लाड करदे, एनु दुलार दे हन।
0: पहरावत पहराग सुखारा।
1: एनु सौखा रखदे हन, वधिया तो वधिया बस्तर, बहुत सारे कीमती आभूषण आदक गहने गट्टे आदक इनू दिते जांदे।
0: श्री अमृतसर आदि स्थाना।
1: ते हुण सात संगा जी देखो बाकी जिहड़े गुरु घर जिहड़े विशेष करके श्री अमृतसर साहिब जो हन, जो यह साडा केंद्रीय अस्थान जिहड़ा है।
0: जय जय रहे मसंद महाना।
1: उत्थे साध संगा जी फिर सिखां दीआं ड्यूटियां मसंदां दीआं ड्यूटियां प्रबंधकां दीआं ड्यूटियां ला दित्तियां कि भाई तुसी इस अस्थान दे विच रहो, इहदी सेवा संभाल जो है यह करना करो, इहदा रख रखाव करना, पूजा पाठ का प्रबंध करना, जमीन जायदाद दा आवक जावक जो भी है ये तुसी करना है।
0: सब संगत ते ले गुर कार।
1: ये लोग की करते साथ संगत जी, क्योंकि गुरु घर पावे छोटा होवे पावे वड्डा होवे ना साथ संगत जी ये सानू याद रखना चाहिदा, ये गुरु घर ना कदी निजी मलकियत नहीं हुंदी है, जिन्हां दी निजी मलकियत हुंदी ओदा रख रखाव ओदा खर्चा ओ अपनी मलकियत तो कर दे, लेकिन गुरु घर जिहड़ा आप जी आपां वेख सकदे आ गुरु घर इहदे प्रबंध जिहड़े हन इह संगतां दी कार दे नाल, संगतां जो कार भेटा करदियां जो माया अर्पण करदियां उहदे नाल प्यारिओ गुरु घर दे प्रबंध जिहड़े हन चलाए जांदे। अज वी आपां वेख सकदे आ कई लोग प्यारिओ उह कह दिंदे कि जी आ गोलकां क्यों लाईआं, आ क्यों कीता जांदा, पैसे की ग्राही क्यों करते, ये क्यों करते, यह प्यारियो किसी निजी व्यक्ति विशेष लई नहीं किया जाता, यह जो भी पैसा आ रहा गुरु घर दे विच कोई अपनी नेक कमाई दे विचों जो भी वह हिस्सा प्राप्त हो रहा प्राप्त करता ना लोक भलाई दे लई लंगरां दे लई ते इमारतां दे लई संगतां दे सुविधा दे लई लोक भलाई दे लई वह पैसा लग जाता। सो यह सारा प्रबंध अज भी प्यारियो वेखो कि गुरु घर

भाव जल भगम असगाहु गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन्न गुण गोबिंद गाहे सब सहनो कृपा।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं।